यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सौम्यता का महत्व. आसमां में चमकता पूनम का चांद कितना प्यारा लगता है. उसकी ठंडी किरणें शीतलता का अनुभव कराती है. चंद्रमा की दूध सी सौम्य रोशनी बड़ी सुखदायी होती है, लेकिन उसके उल्टे ग्रीष्म की कड़ी धूप को तो जानलेवा होती है. सूर्य की प्रखर किरणों से चंद्र की सौम्यता भरी रश्मियां कितनी अच्छी लगती है. सच तो यह है कि सौम्यता एक सुख प्रदायी गुण है. सौम्यता चाहे चंद्र के प्रकाश की हो या फिर इंसान के व्यवहार की, जीवन में सदाबहार लाती है. सौम्यता अर्थात क्रोध रहित होकर शांति संपन्न व्यवहार करना, मन के नियंत्रण द्वारा स्वयं को संयम में रखकर उत्तेजना को शांत करके रखना भी मन की सौम्यता है. दिल को चुभाने वाले तेज शब्दों को टालकर मीठे मधुर और मृदु वचन बोलना भी वाणी की सौम्यता है. आक्रामक रूप को त्याग कर विनयशील आचरण करना, खोटा दिखावा बनावटीपन को त्याग कर शालीनता से पेश आना सौम्यता भरा आचरण है. मन वाणी व्यवहार की सौम्यता व्यक्ति को स्थायी सुख और अमन चैन का अनुभव कराती है. सौम्यता आपसी टकराव से बचने और बचाने में कारगर साबित होती है. वैसे टकराव से कलह पैदा होता है और परिवार और समाज बिखरा जाता है, लेकिन सौम्यता से बात बिगड़ने की बजाय बन जाती है. परिवार के सदस्यों का अगर व्यवहार सौम्यता भरा हो तो आपस में सुसंवाद और तालमेल कायम होता है. समाज में सौम्य व्यक्ति शांति की लहर फैलाते हैं. सौम्यता परिवार और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूती दिलाती है. सौम्यता से कोई भी उलझी बात सहजता से सुलझा सकती है. जहां सभी सौम्य हो वहां कौमी एकता भी सहज कायम हो जाती है. ब्रह्मा कुमारी की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सौम्यता की मूर्त थी, जिनके सौम्य स्वरूप के सामने क्रोधी स्वभाव के लोग भी सहज बदल जाते थे. अतः सौम्य बनिए और सुखदायी रहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज
1: और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई।

0: गई है जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपए महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE
4: फार्मसी कॉलेज प्रवेश प्रारंभ विमान निल्दाण रस्ते बसवन कुर्ची बेलगावी अत्याधुनिक सौलभ्य उस कैंपस के कॉलेज स्थला विविध कोर्स फार्म फार्म डी एम फार्म पीएचडी सेर फार्मसी क्षेत्र उन्नत शिक्षण पड़ी सवर्णवकाश कॉलेज प्रमुख विशेषते 100 वर्ष शैक्षणिक इतिहास अनुभव विश्वद्यंत 3,000 हल्द व्यार्थी बलिष्ठ नेटवर्क ಚೌಕ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ. ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

0: सुन रहे हैं 90.4 FM के LE का मिसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिटी डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असेसमेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी हैं, जो भारत के लिए स्वदेशी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर गणगुण के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर, कि फोन एडिक्शन कैसे होता है। उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
1: मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक बोर एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कौन रिस्क पे है, तो जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हमको हम इनको बार बार यूज करें। वो बनाए इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइंफोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है। हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसमें एकदम आनंद मिलता है जो कि बाकी चीजों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट है, कोई नवयुवक है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं या उससे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो तुरंत

0: संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे यूज करने से आनंद मिलता है। एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो अडिक्ट होने के लिए बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वंडेबिलिटी रहती है, और इसको हम हमें तो पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्रीऑक्यूपेशन होना। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफी देर तक यूज करते हैं और आपका आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
1: एग्जैक्टली
0: उसको बोलते हैं प्रीऑक्यूपेशन। कोई भी और काम करना है लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ वहीं मोबाइल फोन में जाएगा, उसे अवलोकन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्रीऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है उसे बोलते हैं विड्रॉल। विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो, या किसी ने फोन आपसे घर ले लिया। तो अगर ये हो रहा है तो इसका दूसरा लक्षण इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। और आपने आज देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में माँ के बीच में लड़ाई हुई। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स में आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस। तीसरा लक्षण टॉलरेंस का मतलब होता है पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज करने में 10 मिनट यूज करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि वो भी पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक यूज करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है पहले आधे घंटा भी 10-15 मिनट से शुरू होता है, धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन में धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है, तो एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाती। तो तीसरा लक्षण इसे बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट 1 मिनट के बाद बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूँ। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में आप जो है आपके इम्पैक्ट हो पा रहे हैं, मतलब उनको असर पड़ रहा है, जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पर नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पर खत्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसकी वजह से आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं, इसकी वजह से उसमें से कुछ देखा आपने वो चीज़ पसंद आ गई अब उसे खरीदना है तो उसमें, तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। वो होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं, और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद यूज करते हैं तो 3-4 घंटे रात को हो जाता है, बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पांचवा। छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप है उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है, अब आपका मन नहीं करता,

0: रुचि लायक नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज्यादा आनंद हो तो देंगे नहीं, जैसे मैंने शुरू बताया वो एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब खराब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फोन का एक्सेस करते हैं उस टाइम पे, फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है परिवर्तन आ गया।
1: अच्छा।
0: और अपने आप मोबाइल फोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगेंगे। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है कि जब आप कितना पूछा कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं, क्योंकि आपको पता ही कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये आठ लक्षण है, आठ लक्षण में से अगर कोई भी पांच लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
1: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो

0: एडोलेसेंस में और जो यंग एडल्ट हैं उनमें पाया जा रहा है। और हमने यहाँ पर भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है उसमें पाया गया है कि ये मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको उसको बताऊं तो हमने कुछ रिसर्च करी जिसमें कि कर्नाटका में भी हमने कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की, उसमें पाया गया लगभग 2700 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हमने रिसर्च की गई थी। उसमें कुछ प्रेवलेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें 29% को पाया गया जो वो माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन में पाया गया, 16% लोगों को मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन पाया गया और 0.5% लोगों को सीवियर इंटरनेट एडिक्शन पाया गया। और उसमें ये पाया गया कुछ रिस्क फैक्टर भी पाए गए कि तो इसमें ये पाया गया कि जो बॉयज हैं जो मेल यूथ है वो ज्यादा रिस्क पे हैं और जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और जो कि लगभग 3 से ज्यादा घंटे इंटरनेट का यूज या स्मार्टफोन का यूज करते हैं अपने आनंद लेने के लिए या अपने आपको रिलैक्स करने के लिए या कोई और एक्टिविटीज के लिए, वो ज्यादा रिस्क में है। और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था उन लोगों का ज्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को जरूर से ज्यादा यूज करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने के उनको ज्यादा रिस्क है। तो वो कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शक क्लिनिक मुबीन से 2015 में एक सर्वे हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे रूरल एरिया वहां किया था और ये सर्वे 2755 लोगों पर किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल। और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 8.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.8% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
1: अच्छा, तो क्या कहती है आपकी स्टडी की ये जो आंकड़े अभी आपने बताए तो कौन सी स्टेज पे है हम?
0: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सीवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है।
1: अच्छा,
0: तो जो माइल्ड है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 27 से 29% लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है जो असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट है। तो अगर देखा जाए तो सब ज्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है। और इस चीज को अगर

एम्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, उनको भी

0: जो ज्यादा यूज करेंगे इसको तो जो माइल है वो भी मॉडरेट बनेंगे और जो मॉडरेट है वो भी सीवियर की तरफ जा सकते हैं।
1: करेक्ट, तो शिफ्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया तो इसका मतलब ज्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
0: तो इसमें हम ये पाएंगे कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती है, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमेना मैं आपको बताऊंगा। वो बोलते हैं इसे कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, जिससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी जो हड्डी है इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना हो जाता है। इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल क्लिप नहीं हुआ, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगे आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है, जैसे जैसे ही आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है अगर वो 15 डिग्री होता है, तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है भट्टी की तरह ग्रेविटेशन पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा, ये 18 kg का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशन पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक, तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशन पुल करता है। और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि पूरा बिल्कुल इमर्स हो जाते हैं अपने जो

ज्यादा आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उसे नहीं जोड़ पाएंगे तो आपसे बहुत ही जो फिनोमिना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो टच चला जाएगा। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो एक मानसिक फिनोमिना है, और इसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा

0: मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रहता होगा।
1: बिल्कुल,
0: आखिरी बार हम खुद सभी श्रोता सो सकते हैं, आखिरी बार हमारा जब आप नहीं सो रहे हैं

आप किसी से दूसरे से कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो मैं सुन रहा हूँ, वो अपना मोबाइल फोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई उसमें हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे चार फंडामेंटल नीड्स जिसे बोलते हैं मनोविज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो उन पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है वो इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है, और धीरे धीरे फिर वो रिश्ता में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं फबिंग। ये सारे फिनोमिना जो है वो

0: बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने, पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
1: तो वो जिन जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया की प्री ऑक्यूपेशन, वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे भी उनको टाइम मिले एकदम ये तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आकर बैठ जाए। सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगा हो कि जैसे ये काम खत्म हुआ सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहाँ मन लगता है। उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है, हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेल नहीं जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है और अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी हुई खा सकते थे, हो सकता है कुछ और भी काम कर सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? वो मोबाइल फोन के ऊपर मिलेंगे, उसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन में छोड़ देते थे, अब वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से

0: दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बताने का। उनको लगता है जो टाइम जो मुझे मिला है फ्री, वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर दूं। बिल्कुल, तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं इनमें से, अगर 8 लक्षण बताए थे उनमें से अगर 5 भी हैं, तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क है, उनको सहायता की जरूरत है।
1: तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हैं?
0: ओके, तो इनपे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है, लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है, लेकिन उसको यूज कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम लोगों को और जो एडोलेसेंस हैं इस उम्र में, उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फोन बास्केट स्किल।
1: अच्छा,
0: उसमें जरूर फैमिली मेंबर्स को भी बताना पड़ता है। जरूरी है कि सभी जो फैमिली हैं जो दिन बुजुर्ग जो है उसमें, वो शाम को हमें टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे, हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय लगभग, उस टाइम पे सारे जो अपने फोन है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डालना है। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
1: अच्छा,
0: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है, चाहे वो 8 बजे हो चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटी में बिताना है।
1: अच्छा,
0: तो ये सब बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सही होता है कि अपनी सिम काम के समय या पूरे दिन आप कोशिश करनी कि जो नोटिफिकेशन है उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है इसे बोलते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोशिश करेंगे 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें, ये काफी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा,
0: तो कोशिश करेंगे 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फोन, अगर और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का उसमें लिखना पड़ेगा आपको, अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा।

करना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पांस चाहिए तो कृपया कॉल करें। जैसे भी आप फ्री होगी तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप बुजुर्ग से बात करें तो मोबाइल फोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं और इससे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले

0: उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए और एक स्किलों से बोलते हैं न्यू फोन जो घर में जो है पेरेंट्स को और बुजुर्गों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे फोन किसी का भी जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको न्यू फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी जगह हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
1: अच्छा,
0: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं लेकिन कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ हमने देखा अपने लोगों में, हमारे क्लिनिक में वो आधे दिन सुबह उठते हैं लगभग जो भी 9 बजे या 7 बजे उठते हैं, वहाँ से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से ही फास्टिंग करना तो अच्छी बात है। देखिए कि कितनी देर तक आप जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो टेक्नोलॉजी यूज है या स्मार्टफोन एडिक्शन है इससे आप अपने आप को

0: यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रही।
1: बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। आप सुन रहे हैं 90.4 FM के LE कनसु और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस रिमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की और ये जो मोबाइल एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
0: सो जो डिजिटल डिटॉक्स है वो अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्थ में जो टेक्नोलॉजी उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
1: अच्छा,
0: जैसे आज

पैराडॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा और उस टाइम पे हम जो भी हम बाकी दिनचर्या के कार्य हैं करने हैं वो सारे हमें कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी स्टडीज की गई हैं और मैं कुछ स्टडीज के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। मेरे स्टडीज के लिए बाकी बहुत सारे देशों में की गई, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ कोरिया में भी वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को, अगर कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज है मतलब जितने समय तक आप यूज करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो छह स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया और छह की छह में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फोन जो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है, हमारा खुद मनोवृत्त खुद रेगुलेट करना चीजों को बहुत पोर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो दो स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और उन्हें पाया गया कि एक स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। तीसरी चीज जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं जिसे बाद में करेंगे

0: एप्रोक्सीमेशन होगी, उस निर्धारित समय के लिए आप जो है ग्लू ग्रीन उसको बढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिटेल फास्टिंग से, लेकिन डिटेल डिटॉक्सिफिकेशन 3 दिन पे स्टार्ट होता है और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी जिनको माइल्ड है वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिटेल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
1: अच्छा,
0: जो मॉडरेट सिवियरिटी के लोग हैं जिनको लगता है कि ज्यादा है, अगर कोई भी

मेडिटेशन है, कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, और बाकी जो चीज़ है हमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, ये सारा टाइम वहीं से निकाल के आपने मोबाइल फोन को दिया है। और अगर आप इन एक्टिविटीज में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, इन सारे रिलेशनशिप्स में, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो,

सिचुएशन जो है कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें। तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशन देखेंगे नहीं और शाम में कुछ समय के बाद। चौथा है कि हमें जैसे मैंने कहा फोन बास्केट का स्किल, शाम में अपना फोन जो है हमने बास्केट में डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फोन हो चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो फैमिली मेंबर्स के साथ हो या कोई नया स्किल लर्न करना हो या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फोन को अपने पॉकेट में रखें और फिर बात करें।

0: के बाद फोन हाथ में लगे फिर इसे नहीं पाया गया कि जब रात को जब ये फोन हाथ में आ जाता है तो डिनर के बाद में वो कैसे दो घंटे निकल जाते हैं पता ही लगता है।
1: बिल्कुल,
0: और स्टडीज में पाया गया कि लगभग इंडिया में 16 to 19 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है, स्टार्ट होने में डिले हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम अगर ध्यान रखें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
1: आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का। सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है। और उसको लेके मतलब मोबाइल का यूज जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली बहुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ साथ मीमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। तो भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है जहाँ इंटरनेट सोशल मीडिया गेमिंग और जुआ की मद से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिटी डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक। उनको हम सुन रहे थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक जिंदाबाद होंगे और इस वक्त एकदम गौर से सुन रहे होंगे हमारा शो बी रिलैक्स और ट्यून कर चुके होंगे बेलगावी का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन देवभूमि 90.4 के एलई कनसू। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और रेडियो दोस्त, यानी कि और जो आयुष। दोस्तों, फोटो खिंचवाना या क्लिक करना किसे नहीं पसंद? आजकल हर इंसान हर पल को, चाहे वो खुशी का पल हो या फिर कहीं ट्रिप पर गए हो या मस्ती भरा पल हो, उसे उस यादों को वो कैमरे में कैद करना चाहता है। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से तो भैया फोटोज खिंचवाना एक तरीके का ट्रेंड बन गया है या रील बनाना एक तरीके का ट्रेंड बन गया है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे इसी टॉपिक पर आज चर्चा की जाए। आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी पर, तो आप खम लीजिए अपनी वॉल्यूम एकदम फुल और सुनते रहिए 90.4 KLE कनसू और जे आयुष के

back one more time to your favorite show, Be Relaxed. और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 के एलपी कनसो और मैं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी के बारे में, वेयर वी कैप्चर मोमेंट्स व्हिच टेल्स अस द स्टोरीज। दोस्तों देखा जाए तो फोटोग्राफी एक टाइमलेस आर्ट फॉर्म है जो इवॉल्व हो चुका है, एक पावरफुल मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग जहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता एंड इट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस द ग्लोब। आज हम लोग जानेंगे द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ फोटोग्राफी और इसकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को, इसके इंपैक्ट्स को ऑन द सोसाइटी एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू शेप आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जानते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। फ्रॉम द फर्स्ट फोटोग्राफिक इमेज कैप्चर्ड बाय जोसेफ नाइसोफेयर इन अर्ली 19th सेंचुरी टू द डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ 21st सेंचुरी, फोटोग्राफी ने एक रिमार्केबल जर्नी एक्सपीरियंस की है। चलिए बताऊंगा मैं आपको इन्हीं कई एक्सपीरियंसेस के बारे में आफ्टर सम सुपरहिट सॉन्ग। सो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सुनते रहना है हमारा शो Be Relaxed only on Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu पर।

welcome, welcome back, ladies and gentlemen, and people of all the ages, one more time to our show, Be Relaxed, only on Venudhwani 90.4 KLE Kanasu. दोस्तों देखिए, पहले जो pictures होती थी, वो एक silver या silver covered plates जो होती थी, उन पर बनाई जाती थी. और अब देखिए, एक पल में digital shots आ जाते हैं, तो revolution तो भैया हुआ है कहीं ना कहीं. इसी कारण आजकल photography more accessible हो चुकी है, and versatile हो चुकी है पहले से कई ज्यादा. दोस्तों nowadays photography का मतलब painting या shooting ही नहीं, बल्कि it's about how you observe the world with a discerning eye. एक skilled photographer के पास हर वो ability होती है to recognize beauty in the something which is not even interested. मतलब कोई चीज अगर interest नहीं है, लेकिन अगर कोई भैया skilled photographer है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में वो उस चीज की beauty को ढूंढ लेता है. और फिर हमारे देश में या सब जगह बर्थडे से लेकर शादी तक हम फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती ही है, वरना जो यादें हैं उन्हें हमें विजुअलाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. भैया अगर किसी का बर्थडे और शादी है और बाद में उसकी पिक्चर्स ही ना मिले, तो फिर आपको क्या ही याद रहने वाला है. खैर, याद हो भी सकता है. हम उन पिक्चर्स को देखकर ही हर चीज याद करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको शायद याद ना रहे अगर आपके पास कोई पिक्चर्स नहीं हो, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि फोटोग्राफी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है. हम उन पिक्चर्स को देखकर उस वक्त तो दोबारा जीने लगते हैं, और हम आपको करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है बी रिलैक्स. तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए सबको बी रिलैक्स, ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 KLE.

दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे और आप सभी के पसंदीदा शो डी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेन्यू ध्वनि 90.4 केएलई कनसू आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, फोटोग्राफी इज लाइक अ विजुअल स्टोरी टेलिंग, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन जो अलाउ करती है फोटोग्राफर्स को टू टेल कंपीलिंग स्टोरीज एंड विदाउट वर्ड्स। फिर चाहे वो सिंगल इमेज हो या सीरीज ऑफ इमेजेस हो, हर फोटो में वो पावर होती है टू मेक यू इमोशनल एंड स्पार्क कन्वर्सेशन। रॉयल फोटोग्राफी से लेकर कैंडिड स्ट्रीट्स तक विजुअल नैरेटिव्स शेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है ये सब्जेक्ट, या फोटोग्राफी या फोटोग्राफर्स हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्योंकि भैया, मेरी फैमिली ट्रिप्स पर तो मैं ही फोटोग्राफर होता हूँ, और जब मेरी फोटोज क्लिक करने की बारी आती है तो वो पिक्चर मुझे कभी नहीं मिलती जैसे मैं दूसरों की खींचता हूँ, जैसे मैं दूसरों की इमेजिन कर रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है तो भैया मुझे तुरंत बता दीजिए। चलिए जानेंगे कुछ और बातें आपके साथ हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। तो स्टे ट्यून्ड टू वेन्यू ध्वनि 90.4 केएलई कनसू पर।

बाद में दोस्तों बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी शाम को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ट्यून कर चुके हैं हमारा शो भी रिलैक्स, जो कि आता है ओनली ऑन टीनू 90.4 KLE कनसू पर, जो कि बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन है। दोस्तों फोटोग्राफी बहुत इनहेंस हो गई है एक और फैक्टर की वजह से, और वो है टेक्नोलॉजी। इस डिजिटल एज ने फोटोग्राफी को एकदम बदल कर रख दिया है, जिससे हर एज के लोग इसको पसंद करने लगे हैं, इसमें हिस्सा लेने लगे हैं और बहुत सारे लोग इसको अपनी हॉबी भी बना लेते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे फोटोग्राफी बढ़ रही है, वैसे लोगों की एडिटिंग स्किल्स भी बढ़ रही है, और आजकल सभी अपने अपने जिंदगी में फोटोग्राफर्स बन ही गए भैया, क्योंकि आजकल तो सबके पास एकदम हाईफाई स्मार्टफोन्स आ गए। बट डी नेक्रोटाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू क्वेश्चंस अबाउट द ऑथेंटिसिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेजेस इन अ वर्ल्ड फ्लडेड विद विजुअल्स। चलिए आपको भी थोड़ा विजुअलाइजेशन देते हैं और सुनाते हैं आपको थोड़े से विजुअलाइज करने वाले गाने, जिससे आपको थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ सकती है। तो सुनते रहिए हमारा शो रिलैक्स ओनली ऑन रेनू 90.4 KLE।

स्वागत है आपका एक बार फिर। और बताइए कैसी जा रही है आपकी आज की शाम। लगता है आज का दिन बड़ा ही प्रोडक्टिव दे रहा है। चलिए तो सुनते हैं, रही है हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेरू 90.4 KLE कनसुपर। और मैं हूँ आज आयुष, आपके मनोरंजन के लिए और आपको जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार। दोस्तों अब हमने हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक सब जान लिया है फोटोग्राफी के बारे में, तो अब जानते हैं इसके सोशल इम्पैक्ट के बारे में। फोटोग्राफी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल रेंज। कुछ बहुत ही फेमस पिक्चर्स जैसे नाम मैं आपको बताता हूँ, उनके माइग्रेंट मदर बाय डॉर्थी लैंगे, नेपालियन गर्ल बाय निक यूटी हैव स्टायर्ड ग्लोबल कॉन्शियसनेस एंड एक्टिविज्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी फोटोग्राफी की रीचेस को बहुत ही ज्यादा एम्प्लीफाई कर दिया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे ये एक तरह का पावरफुल टूल बन गया है टू रेज अवेयरनेस एंड मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या आपकी रुचि इंटरेस्ट थोड़ा सा फोटोग्राफी की तरफ बढ़ा, क्या आप उसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षक हुए? चलिए आप सोचिए इस बारे में। तब तक मैं करता हूँ आपका मनोरंजन और प्ले करता हूँ आपके लिए एक धमाकेदार गाना। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

रिलैक्स पीपल, आप सुन रहे हैं हमारा शो, आपका शो, हम सभी का शो, यानी बी रिलैक्स ओनली ऑन मेनू 90.4 के एलई कनसू पर। दोस्तों कई लोग फोटोग्राफी में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं और इसमें भी कई तरह की फील्ड होती है। जैसे मैं आपको थोड़ी फील्ड के नाम बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बेहतर जानकारी मिल पाएगी, थोड़ा सा आइडिया मिल पाएगा कि भैया किस किस तरह की फोटोग्राफी लाइन होती है या किस किस तरह के फोटोग्राफी फील्ड होते हैं। पहली लैंडस्केप फोटोग्राफी, दूसरी ट्रैवल फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और फिर एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी, कंटेम्पररी फोटोग्राफी, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी और स्पोर्ट फोटोग्राफी, और भी बहुत सारी होती है। अगर मैं सबके नाम लेने जाऊंगा तो भैया आधा दिन निकल जाएगा। इट इज अ मींस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू शेयर द यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज। कंपोजिशन एंड लाइटिंग और सब्जेक्ट चॉइस से फोटोग्राफर अपने इमोशंस, बिलीव्स और एक्सपीरियंस से लोगों को कनेक्ट कर सकता है। कभी कभी आपको भी कोई पिक्चर्स इतनी पसंद आ जाती है कि भैया आप उससे कनेक्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आप भी इसको अपनी हॉबी बनाना चाहते हैं, क्या आपको इसमें अपना करियर दिखता है? अगर हाँ तो भैया गाइडेंस लीजिए, किसी स्पेशलिस्ट से सजेशन लीजिए और फिर ट्राई करिए। भैया फील्ड तो पूरी ओपन है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनू 90.4 के एलई कनसू पर। मैं आज आयुष लेता हूँ आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ अपना कीमती समय बिताते रहिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।